0: अरे भाई कहाँ जा रहे हो?
1: मंदिर जा रहा हूँ।
0: मंदिर तो बंद है, मंदिर पूरे एक साल बाद खुलेगा। अरे भाई

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

परम संदेश पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्वर वंदना। धर्म सभा के गौरव स्वरूप विराजमान ऋषि कुल कमल महाराष्ट्र प्रवर्तक श्री के चरणों में आप सभी की ओर से वंदना। स्नेही संत वृंद, श्रद्धालु, इतिहास से अनजाने श्रद्धालु श्रोतागण, जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है उस समाज का न वर्तमान रहता न भविष्य रहता है। आचारांग सूत्र का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, जस नथी पुआ पच्चा तस मध्य को ओसिया। जिसको इतिहास नहीं और जिसको भविष्य नहीं उसको वर्तमान नहीं है। इतिहास हमारा पावर हाउस है और कहने थे मुझे आज जो महाराष्ट्र में गुरुदेव के आयुष्य पूर्ण करने के बाद इस संप्रदाय के वायरस जो बढ़ गए उसका मूल कारण है कि महाराष्ट्र वाले अपने इतिहास को याद नहीं रख पाए। ये आज का दिन है हम सभी के लिए इतिहास के उन पन्नों को सुनने का, समझने का। आज से 140 साल पहले, करीबन 150 साल पहले क्या स्थिति थी कल्पना कर सकते हो? पूरे महाराष्ट्र में एक जैन संत नहीं था, एक जैन संत नहीं था। लाखों की संख्या में जैन थे लेकिन जैन संत नहीं था। ना दिगंबर था, ना मंदिर मार्गी था, ना स्थानकवासी था, कोई संत नहीं था। महाराष्ट्र में राजस्थानी जैनों का आगमन 10वीं शताब्दी से है। दौलताबाद के दौलतगढ़ के किले में 10वीं शताब्दी का जैन मंदिर है। कल्पना करिए 700 से 800 साल तक बिना धर्म गुरु के आपके पूर्वज यहां कैसे रहे? मारवाड़ में संत थे, राजस्थान में संत थे, मालवा में थे, एमपी में थे, गुजरात में थे, महाराष्ट्र में नहीं थे। कारण केवल एक था, आने का रास्ता नहीं था। 17 साल मुझे लगे गुरुदेव के भूमि पर चतुर्मास करने के लिए कि सबके लिए रास्ता था, मेरे लिए रास्ता नहीं था। बार बार रास्ता बनाने वाले को धन्यवाद देते रहता हूं। महाराष्ट्र में संतों को आने का रास्ता नहीं था। याद करिए उस व्यक्ति को, गंभीर मनसा लोढ़ा,
घोर नदी निवासी। जिसको ये तड़प जन्मी, जिसकी ये तमन्ना हुई कि मुझे मेरे गुरुओं को महाराष्ट्र में लाना है, और प्रसंग भी ऐसा गजब का था कि उनकी बेटी राम कुंवर बचपन में ही विधवा हो गई थी, और बाप की तमन्ना हुई कि मेरी बेटी बचपन में विधवा हुई, उसको आपस में भोग के संसार में नहीं भेजूंगा, वापस उसको मैं पाप की दलदल में नहीं भेजूंगा, इस दलदल के बीच में उसको मैं संयम के राह पर भेजूंगा। एक बाप की तमन्ना है। और इसलिए वो मारवाड़ गए, मालवा गए संतों को विनंती करने के लिए कि पधारो, महाराष्ट्र में पधारो, कस्टमर बहुत है, दुकान एक भी नहीं है, खेती बहुत है, किसान नहीं है, बगीचे बहुत है, माली नहीं है, लेकिन जिस भी संत के पास जाते हैं एक ही जवाब मिलता है, जहां जाने का कोई रास्ता नहीं वहां हम आएंगे नहीं, हम नहीं आ सकते, हम नहीं आ सकते। और कुछ अनुभवी संतों ने कहा, कोई आ सकता है, किसी को तुम ले जा सकते हो, तो वो तिलोक चंद जी महाराज साहब है, तिलोक ऋषि जी महाराज साहब है, वो हिम्मत कर सकता है आने की। क्या कारण, क्या वजह, क्यों ये विश्वास कि 30 साल का जवान संत इस रास्ते पर जा सकता है, ये विश्वास कहां से आया। उसका कारण था, ऋषि परंपरा में काव्य रचना करने के रास्ते बंद थे, गीत बनाने के रास्ते बंद थे, गीत बनाने की मना थी, स्तवन बनाने की मना थी, भजन बनाने की मना थी, काव्य रचना करने की मना थी, इसलिए मना थी कि काव्य रचना में झूठ बोला जाता है, और झूठ बोलना संत के दूसरे महाव्रत के लिए स्वीकार नहीं है। और उठा करके देख सकते हो आज के नए नए जो काव्य रचना करते हैं उन लोगों के, उनके काव्य में इतना झूठ भरा हुआ रहता है, इतना झूठ भरा हुआ रहता है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन दर्द मन का जरूर तुम्हारे सामने रखूंगा। एक ऐसे संत के लिए जिसने अपने गुरु का संग तोड़ा, गुरु की आज्ञा के खिलाफ, गुरु की इच्छा के खिलाफ जाकर के संग तोड़ा, और उस संत के लिए उनके भक्तों ने, उनके साधुओं ने, उनके साधियों ने गीत बनाए कि इनमें 24 तीर्थंकरों का चरित्र है। किनका? ये ऋषभदेव है, ये अजितनाथ है, ये संभवनाथ है, ये अभिनंदन स्वामी है। और कहा कि ये आजाद शत्रु है, गुरु भाई के साथ दोस्ती नहीं, आजाद शत्रु है। इतना झूठ
दर्द इस बात का है कि झूठ के खिलाफ कोई बोलता नहीं है, और इसलिए ऋषि परंपरा में काव्य रचना करने के बनाते हैं। और इस छोटे से बालक ने, जिसने 10 साल की उम्र में इसलिए दीक्षा

दीक्षा अक्ल से नहीं होती है, दीक्षा अक्ल से नहीं होती है, दीक्षा भावना से होती है, दीक्षा श्रद्धा से होती है, दीक्षा प्रेम से होती है, बुद्धि से दीक्षा नहीं होती है। बुद्धिमान दीक्षा नहीं लेते हैं, बुद्धिमान लोग दीक्षा नहीं लेते हैं। दीक्षा लेने के लिए अपनी आत्मा पर श्रद्धा लगती है, प्रभु पर श्रद्धा लगती है। दीक्षा श्रद्धा से होती है, ज्ञान से नहीं होती है। मां दीक्षा ले रही थी और मां दीक्षा ले रही है तो मुझे भी दीक्षा लेनी है। बेटी थी, बहन थी, उसने कहा तुम दोनों ले रहे तो मैं भी लूंगी। बड़ा भाई था, उसने सोचा अरे मेरे से छोटा होकर के दीक्षा ले रहा है। बड़े भाई ने आगे रहना चाहिए कि छोटे ने आगे रहना चाहिए? ये छोटा होकर के दीक्षा ले रहा है, मैं भी लूंगा। और धन्य वो दिन विक्रम संवत 1914, धन्य वो दिन विक्रम संवत 1914, धन्य वो भूमि रतलाम की, धन्य वो कुल सुराना का, धन्य वो मां नानूबाई। पिताजी चले गए थे, तीन बेटे थे, एक बेटी थी। और एक बेटे को छोड़ करके चारों ने दीक्षा ली। मेरा मन तो सबसे पहले उस बेटे को धन्यवाद देने का और सवाल पूछने का हो रहा है। कि उसने आज्ञा कैसी थी, और दूसरा सवाल पूछने का मन होता है कि चार ने दीक्षा ली तू किस लिए पीछे रह गया। और मजा देखिए, जो पीछे रह गया उसका कहीं नाम ही नहीं मिल रहा है। जिन्होंने दीक्षा ली उनका नाम हो गया, थाने भी था को नाम रखना उसी तरह दीक्षा ले जाओ। अयवंता ऋषि जी महाराज साहब ने दीक्षा दी, सुराना परिवार धन्य हो गया। 10 साल की उम्र में बेटे ने दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर के पापी श्रमण नहीं बना। भगवान महावीर कहते, तीर्थंकर महावीर कहते हैं कि जो दीक्षा लेकर के शिक्षा संयम के लिए समर्पित नहीं होता है वो पापी श्रमण है। जो दीक्षा के जीवन की सुविधाएं लेता है लेकिन दीक्षा के जीवन की साधना नहीं करता है वो पापी श्रमण है। दुनिया में कोई आपको धर्म प्रवर्तक नहीं मिलेगा जो आपने संघ में दीक्षा लेने वाले को पापी कह दे। ये हौसला किसी का हो सकता है तो तीर्थंकर महावीर का ही हो सकता है। और तिलक ऋषि मासा पापी श्रवण नहीं बने। 17 आगम कंठस्थ किए, कितने 17 आगम कंठस्थ किए। मैं तो राइट हैंड से लिखूं तो 5 दिन के बाद मैंने क्या लिखा ये मैं नहीं पढ़ सकता। और उस व्यक्ति को नमन करो ना जो दोनों हाथों से लिखता था, दोनों पांवों से लिखता था। कहां से ट्रेनिंग ली, कौन सी कोचिंग लगाई, कौन था सिखाने वाला, कहां से ये सपने आए? आपके मन में आया कभी कि मेरे दो

0: दोनों हाथों से मैं इक्वल काम करूं, ये सपना आना ही मुश्किल है। हम तो सब एनिमल कैरेक्टर जीते हैं, एनिमल कैरेक्टर बोल रहा हूं। एनिमल कैरेक्टर मीन्स जितना होता है उतना करता हूं। हेलो, एनिमल किसको कहते हैं? जितना होता है उतना करता हूं। इंसान का कैरेक्टर होता है जो हुआ नहीं, जो होता नहीं, लेकिन जो हो सकता है वो करता, वो इंसान है। जो हुआ नहीं था, जो होता नहीं था, वो करने का सोच बनाया होगा और कोई सिखाने वाला नहीं। मैं तो इन महापुरुषों पर सोच सोच करके मेरा तो मति स्तब्ध हो जाती है। ट्रेनिंग देने वाले होकर के भी हम सीख नहीं पाते हैं, और बिना ट्रेनिंग दिए वो सीख गए। नो मोटिवेशन, आठे तो मोटिवेशन दे रही हो आठाई रही, फिर भी एक्टिवेशन नहीं हुए। नहीं मान साहब, कभी करी को नहीं हुई, सो वाटे को नहीं। याद कर लो, 33 सागरोपम नारकी में रह करके आए हो, कम से कम 10,000 साल रह करके आए हो, और वहां खाने को कुछ नहीं मिला है, पीने को कुछ नहीं मिला है। पीने के नाम से अपने ही शरीर का मांस फैट पिघला करके गर्मा गर्म पिलाया गया है। वो तुम ही और वो मैं ही हूं जिन्होंने पिया है। वो अपने ही शरीर का मांस काट करके खिलाया गया है कि तूने इंसान की जिंदगी में दूसरे का मांस खाया ना, देख ले मांस कैसे खाया जाता है। स्वयं का ही काट करके खिलाया गया है। जरा उसको याद करो तो पता चलेगा। शालीभद्र ने कभी नौकरशी नहीं करी थी, कभी लुक्खी रोटी नहीं खाई थी, लेकिन एक बार मन में ठान लिया कि मुझे कर्मों से मुक्त होना है, तो वो शालीभद्र तपी हुई शिला पर लेट करके अतापना लेता है और तिलक ऋषि जी महाराज साहब ने दो हाथों और दो पांव से लिखना चित्रकला काव्य, लेकिन काव्य अंदर से जन्मने लगा और परंपरा ने मना रख कर रखी कि नहीं, काव्य नहीं गाना, गीत नहीं गाने, गीत नहीं बनाना। जो रुक जाते हैं वे पत्थर होते हैं, जो रुक जाते हैं वे पत्थर होते हैं, जो रोकने के बाद रास्ता बनाते हैं वही गंगा जैसी पावन नदी बनते हैं। ए भो शांति से बैठ जा, है ना। जो रुक जाते हैं वे पत्थर बनते हैं, और जो मुझे रोकने आते हैं लेकिन मैं रुकता नहीं, रुकाने वाले को निकाल देता हूं, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं रास्ता बनाने वाला हूं, रुकने वाला नहीं हूं। तुम्हारा क्या विचार है? रुकना है या रास्ता बनाना है? तो बनाओ, अठाई का रास्ता बनाओ, मस्ती से रास्ता बनाओ, अच्छी तरह से बनाओ। और तिलक ऋषि जी गुरु के पास पहुंचे, गुरु से पूछा, मेरे अंदर से जन्म रहा है उसको कैसे रोकूं? नहीं बोले ने तू काव्य रचना नहीं कर सकता है, हमारे पूर्वजों ने मना करी है, हमारी परंपरा में मना करी है, हमारे संप्रदाय का विधान है कि काव्य की रचना तू नहीं कर सकता है। मुझे भी कहा गया अपनी परंपरा नहीं कलश की, अपनी परंपरा नहीं है नौकर कलश की, अपनी परंपरा नहीं आरंभ की, अपनी परंपरा नहीं गर्भ संस्कार की, अपनी परंपरा नहीं ध्यान की, अपनी परंपरा ये नहीं मेरे तो सारी। और मुझे तो बड़े गजब के सवाल पूछे गए, तुम्हारे गुरुदेव ने नहीं किया तुम क्यों करते हो? क्या बड़ा गजब का सवाल था। और मेरा जवाब भी बड़ा मस्ती का था, मेरे गुरुदेव ने ये सारे काम मेरे लिए सुरक्षित रखे थे कि तू ये काम करना है, आप कहां इन लोगों के खोपड़ी से खोपड़ी लगाओ। जो बाप ने किया वो बेटा करता है, उसको जनावर कहते हैं। हेलो, जो बाप से आगे कदम बढ़ाता है वो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा सुपुत्र होता है। और तिलोकृषि जी महाराज साहब ने गुरुदेव से कहा, क्यों मना है? ओके, पर क्यों मना है? कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? आज के लोग कहते कि आज के जवान सवाल बहुत पूछते हैं। अरे सवाल पूछते तभी तिलोकृषि बन सकेंगे, बिना सवाल पूछे तो लो ऐसे ही तुम भूंदू रह जाओगे। जो सवाल नहीं पूछ सकता है वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन पूछने की हिम्मत जिसमें होती है वही आगे बढ़ सकता है। और आपने गुरु से क्वेश्चन पूछा क्यों मना है, और गुरु ने बताया इसलिए मना है कि काव्य रचना करते समय विवेक नहीं रहता है, झूठ बोला जाता है, भाषा समिति में दोष लगता है, वचन गुप्ति में दोष लगता है, दूसरे महाव्रत में दोष लगता है। जो हार माने वो तिलोकृषि कभी हो ही नहीं सकते, जो रोकने से रुक जाए वो कभी तिलोकृषि हो ही नहीं सकते। और उन्होंने गुरुदेव के चरणों को स्पर्श करते हुए कहा, मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको कमिटमेंट देता हूं कि मैं तीनों दोषों से बच करके यदि काव्य रचना करूं, यदि आपका आशीर्वाद मिल जाए तो ये दोष मैं लगाऊंगा नहीं, बस आपके आशीर्वाद मिलने चाहिए मुझे काव्य रचना करने के लिए। उस गुरु को देखिए, जिस गुरु ने अपने शिष्य के तरफ देखा है, क्या गुरु का विश्वास चेले पर। और परंपरा की मर्यादा को परे रख करके गुरु ने आज्ञा दे दी, यदि ये तीन दोष नहीं लगाता है तुझे काव्य रचना करने के लिए मेरी आशीर्वाद है। श्री अयवंता ऋषि जी महाराज साहब की यस, परंपरा के बाहर जाकर के आज्ञा देना। क्यों संतों के मन में एक विश्वास था तिलोकृषि महाराज साहब को लेकर के, किसने बंद पड़ी हुई परंपरा से में रास्ता निकाला है, ये नए रास्ते बना सकता है, ये नई व्यवस्था बना सकता है, ये महाराष्ट्र जा सकता है। मैं कुछ सवाल पूछूं क्या? हेलो, इतना विश्वास आपके बेटे पर आपका है क्या? सवाल किस लिए होते हैं? जवाब लेने के लिए। अरे बेटा मैं नहीं कर सक्यो, तू किसके करीला? वाह रे वाह। अरे शाहजी राजे ने कभी शिवाजी राजे को नहीं कहा, कि मैं नहीं कर सका तो कैसा करेगा। वो तो आराम से आदिल शाह को जवाब दे सके कि मेरा बेटा मेरा सुनता नहीं है, उसको मैं रोक नहीं सकता हूं। धन्य उस गुरु को कि जिसने परंपरा को परे रख करके अपने शिष्य को नए रास्ते पर चलने के लिए परमिशन दी। और फिर तो जो काव्य गंगा बही, 70,000 काव्य, कितने बोलो, आंकड़ों तो बोलो, 70,000, 70,000। और वो दिन में काम करना है, रात को नहीं। ना बॉल पेन था ना शाही का पेन था, शाही रोज की रोज बनानी, बोरू बनाना और कागज पर लिखना है। जो तुम पार्कर पेन से नहीं लिख सकते हो, उन्होंने बोरू से लिखा है। एक छोटे से पोस्ट कार्ड जितने जगह पर वैश्विकले के 10 अध्याय लिख दिए, और कोई दूरबीन नहीं थी। क्या पता नहीं, पता नहीं कैसे उन्होंने किया, सवाल है मन में आज भी। और करते इसलिए थे कि प्रभु वाणी की आराधना करते थे, परमात्मा प्रभु महावीर की अंतिम देशना श्रीमद उत्तराध्ययन सूत्र जिनेश्वरी की डेली 3 घंटे खड़े रह करके काय स्वर्ग में उत्तराध्ययन सूत्र का ध्यान करते थे, जो आपको सिखा रहा हूं प्रतिक्रमण सूत्र के बाद। स्वाध्याय करना आसान है, वाचना करनी आसान है, आग बंद कर करके उन अक्षरों का ध्यान करना, तब जाकर के लब्ध अक्षर का जन्म होता है। और इसलिए उन्हीं के पुण्य भूमि पर आवश्यक सूत्र आगम की आपको वाचना विधि और साधना रोज शुरू करिए। क्या हो सकता है प्रभु वाणी के अक्षरों के ध्यान से, डेली 3 घंटे खड़े रह करके उत्तराध्ययन सूत्र का ध्यान करना है। कहां से नर्व, क्यों नहीं शक्ति आएगी? परमात्मा के निर्वाण कल्याणक के आशीर्वाद जिसमें, शक्ति जिसमें, क्यों नहीं उसके ध्यान से शक्ति आएगी? और तब गंभीर मजी लोढ़ा मालवा में विराजमान तिलोकृषि जी महाराज साहब के पास पहुंचे, पुरजोर विनंती करी कि आप पधारो, बहुत लाभ होगा। एक पहली बार दर्शन का आया हुआ श्रावक कह रहा है, एक अनजाने प्रदेश में आने के लिए आमंत्रण दे रहा है और कह रहा है कि बहुत लाभ होगा। और 32-31 ईयर का वो संत उस श्रावक को निहाल कर देता है कि चौमासा पूरा होने के बाद तुम्हारी भावना को ध्यान में रखकर विहार करने की भावना है। धन्य उस गंभीर मजी लोड़ा को। गंगा को लाने वाला भगीरथ होता है, और महाराष्ट्र में इस ऋषि गंगा को लाने वाला कोई भगीरथ है तो गंभीर मजी लोड़ा है, घोड़ नदी के। और विक्रम संवत 1935 का चतुर्मास पूर्ण कर विक्रम संवत 1936 के चतुर्मास के लिए घोड़ नदी पधारे, और घोड़ नदी सीधे नहीं गए, पूरा उन्होंने अपना रोज का लिखा है, दैनंदिनी लिखी हुई उनकी कि आज मैं कहाँ गया, आज मैंने क्या किया, कहाँ लोच किया, कहाँ कौन से काव्य की रचना करी, कहाँ मैं कितने दिन रुका, कहाँ मैं वामपुरी 2 दिन रुका, कहाँ मैं करजगांव 1 दिन रुका, कहाँ कितने दिन रुका, इसका जिक्र है। और घोड़ नदी पहुंचने के पहले वामपुरी से विहार कर करके अहमदनगर पधार रहे थे। और पितलिया जी की पीढ़ी पर किसी ने जाकर के समाचार दिए कि आपके गुरु आ रहे हैं, और सेठ साहब ने अपने पूनम चंद जी नाम के मुनीम को घर भेजा कि सेठानी को समाचार दे के गुरु महाराज पधार रहे हैं। अभी तो सेठानियां रही नहीं, सॉरी अभी सेठानियां नहीं रही, अभी तो सब वाइफ हो गई, वाइफ वाइफ है कि नाइफ है वो तुम तुम्हारा देखो, है ना। अभी तो क्या बोलते हैं, माय बेटर हाफ, यानी हाफ ही है, फुल नहीं है। पता नहीं कौन सी भाषा लेकर के आए, वो बेटर कम बिटर हो जाती पता ही नहीं चलता है। पहले सेठानियां होती थी, उनका दिल भी सेठानी का था, उनका कैरेक्टर भी सेठानी का था। अब तो थे परिचय करता हूं ना करो, वहां की वाइफ है तो अभी वाइफ हंस रही ना, तो थाने थाने नाइफ तो माने कटो कई करी रहा। और सेठानी को मैसेज मिले, सेठानी को हेलो किसको, हाँ सेठानी को मैसेज मिले, और उस सेठानी का नाम है रंभाबाई पितलिया। और जिसने समाचार दिए गुरु के आने के, ना सेठ को पूछा ना आगे पीछे सोचा, हाथों में जो सोने के कंगन थे उतार करके उस बधाई समाचार देने वाले को बधाई में सोने के कंगन दे दिए। थाने तो व्हाट्सएप माते मैसेज आवे तो भी देखन को टाइम नहीं रहे, सोनारा कंगन तो छोड़ो ते चावल का दाना भी दे दो तो घनो है ना। और रंभाबाई पितलिया जिसने गुरु आगमन की खबर देने वाले को निहाल कर दिया है, और केवल आगमन की खबर देने वाले को निहाल नहीं किया तो अपनी रेती भी हवेली आधी धर्म स्थान के लिए भेंट कर दी। महाराष्ट्र का पहला स्थानक कही है और किसी के नाम से है तो रंभाबाई पितलिया जैन धर्म स्थानक नवीपेठ। पितलिया परिवार को अभिनंदन, और प्रवर्तक से जी की आज्ञा से उनके स्वीकृति से आज के इस पावन अवसर पर उस गुरु भक्त आगम के शब्दों में कहूं तो महाराष्ट्र की पहली सयातर भगवान महावीर के लिए जमाने में थी जयंती श्राविका, और महाराष्ट्र की पहली कोई जयंती श्राविका बनी है तो रंभाबाई पितलिया और महाराष्ट्र प्रवर्तक सी के आज्ञा से आज उस रंभाबाई पितलिया को जयंती रंभाबाई पितलिया के बिरुद से अलंकृत करता हूं।
1: हर्ष हर्ष
0: थाने जयंती नाम समझने थोड़ो टाइम लागिला, मैं उन्हें कहीं कर नहीं सकू। लेकिन जब मुझे बाबू सेठ ने कहा कि रंभाबाई जी को अलंकृत करना है, उसने बहुत सारे ये कहो वो को मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब भी रंभाबाई का नाम मेरे दिल में उभरता है तो मुझे केवल जयंती श्राविका ही नजर आती है। ऐसे कवि कुलभूषण पूज्य पासी तिलक ऋषि जी महाराज साहब, प्रतिक्रमण की सवैया जो बोलते हो ना, नमो श्री अरिहंत कर्म को किया अंत, उवासो केवलवंत करुणा भंडारी, पूरे भारत में कहीं पर भी जाओ, पूरे भारत में कहीं पर भी जाओ, किसी भी संप्रदाय में जाओ, उनको पूछना तिलक ऋषि जी महाराज साहब के पहले सवैया थी क्या, आज प्रतिक्रमण का वो अंग बना हुआ है। अरे कल्पना करो उस व्यक्ति की कि जिसकी काव्य रचना आगम में प्रविष्ट हो गई, और वो भी आवश्यक सूत्र जैसे आगम में, और वो केवल ऋषि परंपरा में नहीं तो भारत के सारे स्थानकवासी परंपरा में, चाहे पंजाब हो, चाहे मारवाड़ हो, चाहे मालवा हो, चाहे ज्ञानगच्छ हो, चाहे रतनवंश हो, चाहे साधु मार्गी हो, प्रतिक्रमण में सवैया किसी की बोली जाती है तो कहत तिलोकरिक। कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई हुक्मनामा नहीं निकला था, फतवा नहीं निकला था, कोई फतवा निकालने की सिस्टम नहीं थी कि कवि कुलभूषण तिलक ऋषि महाराज साहब के सवैया प्रतिक्रमण में गानी है। जो शेर होता है उसका किसी को अभिषेक नहीं करना पड़ता है, अभिषेक करने की आवश्यकता उनको पड़ती है जब किसी गधे को शेर बनाते तो घोषणा करनी पड़ती कि ये शेर है, और कितनी घोषणा करो गधा शेर हो सकता नहीं है, और घोषणा करो या मत करो शेर शेर ही रहता है। वो कवि कुलभूषण पूज्यपाद से तिलक ऋषि जी महाराज साहब की वो काव्य रचना, उसके बाद कई लोगों ने प्रयास करे, कई संतों ने प्रयास करे, अच्छे अच्छे कवियों ने प्रयास करे कि अपने संप्रदाय में अपनी सवैया चलनी चाहिए, अपने संप्रदाय में अपनी सवैया चलनी चाहिए, लेकिन गृहस्थी के श्रावक के मन में तो अभी भी कहत तिलोकरिक। सारे संप्रदायों के बंधनों को तोड़ करके जिसकी काव्य गंगा जिन शासन का गौरव बनी, ऐसे कवि कुलभूषण पूज्यपासी तिलक ऋषि जी महाराज साहब वो महाराष्ट्र में नहीं पधारते तो ना गुरुदेव होते, ना तुम होते, ना मैं होता, ना ये धर्म सभा होती। दावा तुम कुछ भी कर लो लेकिन इतिहास को तुम झुटलाने का पाप मत करो, ये इतिहास है। महाराष्ट्र यदि किसी का ऋणी है दक्षिण भारत यदि किसी का ऋणी है, किसी ने रास्ते बनाए हैं, किसी ने व्यवस्था बनाई है, तो एक ही नाम है कवि कुलभूषण पूज्य पासी तिलोक ऋषि जी महाराज साहब। मुझे बहुत गौरव की अनुभूति है। कि मैं उनका पड़पोता हूं। क्या हूं? पड़पोता हूं। बराबर है? ये बड़े पड़पोते हैं। हाँ, मैं छोटा पड़पोता हूं। हम बड़े पड़पोते हैं। मैं छोटा पड़पोता हूं। मुझे खुशी है कि मेरे परदादा ऐसे। मुझे खुशी है कि मेरे परदादा ने वहां रास्ते बनाए जहां इतिहास में रास्ते नहीं थे। मुझे खुशी है कि मेरे परदादा बने हुए रास्ते पर नहीं चले तो उनके बनाए हुए रास्ते पर समाज चला। रोड यूजर बनना कि रोड मेकर बनना, ये सवाल स्वयं को पूछो। आग्रह इतना जरूर कर सकता हूं, रोड मेकर नहीं बनो तो रोड यूजर बनो, लेकिन कभी रोड तोड़ने वाले मत बनो। रास्ते बना नहीं सकते हो तो बने हुए रास्ते तोड़ने का पाप तो मत करो। किसी की आस्था के दरवाजे तो बंद मत करो। किसी के धर्म सभा में आने के दरवाजे तो बंद मत करो। रास्ते बना सकोगे तो नाम रोशन हो जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर को लोग याद क्यों करते हैं? क्यों ये कहते हैं कि तू आमचा बाप होता म्हणून आम्ही आहोत। और सच कहो, महाराष्ट्र के जैनियों को एक ही वाक्य बोलना चाहिए कि तिलक ऋषि जी महाराज साहब आप हमारे गुरु थे इसलिए हम हैं। तुम हमारे नहीं होते तो हम कहीं के नहीं होते। ऐसे कवि कुलभूषण पूज्य पासी तिलक ऋषि जी महाराज साहब की एक सौ चालीसवीं पुण्यतिथि आज है। विक्रम संवत 1940, पहला चौमासा घोर नदी किया 36 का, 37 का चौमासा अहमदनगर किया, 36 का चौमासा घोर नदी, 37 का चौमासा अहमदनगर, 38 का चौमासा वांबुरी, 39 का चौमासा फिर घोर नदी, और फूर्ति का चौमासा अहमदनगर श्री संघ को प्रदान किया। रुकना तो उस व्यक्ति ने जाना ही नहीं। इतने गांव पर से कि उतने गांव मैंने भी अब तक महाराष्ट्र के नहीं पर से। हाँ, अभी गया हूं मैं करज गांव। कांगुनी तो अब तक मैं गया ही नहीं, वो कांगुनी भी गए। अभी तो उन्होंने जिन जिन गांव में यात्रा करी वो सबके नाम है। और फूर्ति का चमासा करने के लिए वामबुरी से वामबुरी में विराजमान थे। तबियत स्वस्थ नहीं थी, बुखार था, बहुत ट्रीटमेंट करी लेकिन कोई आराम हुआ नहीं। पूरा समाज चिंतित था और भावना थी कि नगर पधार जाए तो उपचार हो जाए। और वामबुरी से विहार किया है। सिर दर्द भयंकर बढ़ गया है। और उसी अस्वस्थता में उसी दर्द में आषाढ़ शुक्ला नवमी को अम्बन नगर में प्रवेश किया। इलाज बहुत हुए लेकिन कोई इलाज लागू नहीं हुआ। वो परम रहस्य के ज्ञाता थे। मेरे पास समय नहीं, मैं टाइम पर पूरा करने वाला हूं। मैंने समय का बंधन तोड़ना नहीं है। मुझे पता है मैंने समय का बंधन तोड़ा कि तुमने मेरे यहां ना बंद कर दिया, इसलिए फिर एक बार सुराना परिवार को बधाई दूं कि इस बारिश के मौसम में भी उन्होंने तिलोक भक्ति यात्रा का नियोजन किया और निकाली। बारिश देख करके मुझे लगा था कि शायद ये भक्ति यात्रा नहीं निकालेंगे, लेकिन ये भी तिलोक ऋषि जी महाराज सबके वंश जी, किसी के बारिश के रोकने से रुकने वाले थोड़े। और पक्का है, आप देख लेना, देख लेना, सुराना परिवार में से सजोड़े अठाइयां बिल्कुल पक्की होने वाली है, किसी के रोकने से रुकने वाले नहीं
1: है। हर्ष हर्ष
0: ईशोज हंसता रे, जो 13 तारीख ने भी ईशोज अठाई रो चेहरो हंसतो ये दिखन से जन ना, सोच जो मती कटे फंस गया ना। बधाई इनको, इस मौसम में इन्होंने भक्ति यात्रा निकाली और बहुत शान से निकाली, बहुत व्यवस्थित निकाली, बहुत डिसिप्लिन से निकाली। और जो कुछ किया इन्होंने इनकी कल्पना से किया, इनकी प्रेरणा से किया, इनके भक्ति से किया। और आज का वो दिन उन्होंने स्वीकार किया कि अब इस तन में रहने का समय बीत रहा है। योगी मृत्यु से भागता नहीं, योगी मृत्यु में जागता है। और जो मौत में जाग जाता है वही योगीश्वर होता है। जिसको मौत मार देती है वो या तो रोगी होता है या भोगी होता है। जो मौत के पलों में जाग जाए वही मृत्युंजय होता है। और वो योगेश्वर अपने शिष्य मेरे दादा गुरुदेव शिक्षा महर्षि श्री रतन ऋषि जी महाराज साहब, उनके पिताजी स्वरूप ऋषि जी महाराज साहब, और दो संत, उनके साथ सारी क्षमा याचना करते हुए जीवन का पाथे देते हुए उन्होंने तीर्थंकर परमात्मा के दिव्य वरदान को स्वीकार करते हुए अपनी सांस, अपनी अंतिम सांस इस भूमि में लेकर के इस भूमि को पुण्य भूमि बनाया। वो आज का दिन महाराष्ट्र के उस योगी की पुण्य भूमि है। और पूरे महाराष्ट्र ने उनके जन्म जयंती भी मनानी चाहिए, पुण्य तिथि।

बस मेरा समय हो गया, बात पूरी नहीं हुई लेकिन समय पूरा हो गया। और इंसान तेरे जिंदगी की यही कहानी है, इंसान तेरे जिंदगी की यही कहानी है, समय पूरा हो जाता है, बात अधूरी रह जाती है। मैं मेरे नियम के अनुसार मंगल पाठ सुना रहा हूं, लेकिन आप सभी से आग्रह करूंगा, मंगल पाठ सुनकर के आज उठना मत, बारिश चल रही है और महाराष्ट्र प्रवर्तक से कुंदन श्री महासाब बरसने वाले हैं, उनकी बारिश में भीगे बिना उस बारिश में जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और आपको पता है कि महाराष्ट्र प्रवर्तक से जी आपकी समय की पूरी कीमत करते हैं, वो बिल्कुल कम समय में ज्यादा बात करते हैं, है ना। तो मैं मेरे कमिटमेंट के आधार पर मंगल पाठ दे रहा हूँ, लेकिन आज आपसे इतनी तिलुक ऋषि महाराज साहब के पुण्यतिथि पर इतना आग्रह जरूर कर सकता हूँ कि ज़्यादा नहीं, वो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, माइक लावन भाई, वो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, 5 मिनट ही बोलेंगे, 7 मिनट बोलेंगे, और आपको पता ही नहीं चलेगा 7 मिनट कब पूरे हो गए, है ना। तो पहले मंगल पाठ और फिर प्रवर्तक से जी का प्रवचन के बाद का मंगल पाठ। चलारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम चलारी लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहू लघुतमा केवली पन्नतो धम्मो लघुतमा चत्तारी शरणम भवज्जामि अरिहंते शरणम भवज्जामि सिद्धे शरणम भवज्जामि साहू शरणम भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम भवज्जामि चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पदोय। बस एक खबर दे रहा हूं आपको, इस गुरुदेव की भूमि पर अरहम स्पिरिट का एक साइक्लोन आ रहा है। क्या आ रहा है? किसका? अरहम स्पिरिट का। 15 से 25 साल की आपकी जनरेशन का साइक्लोन आ रहा है। मैं साइक्लोन ही बोलूंगा उसको, और कुछ नहीं बोल सकता हूं। परसों से तो शुरू हुआ कार्यक्रम, और कल ऊपर का पूरा हाउसफुल होकर के पीछे के गैलरी में बैठ गए थे बच्चे, और सभी बच्चे 9:20 के पहले पहुंचे थे। क्लास था 9:30 का, और मैंने उनको बोला तुम्हारा विचार दिखता है, मैंने कहा नगर में साइक्लोन लाने का, ये क्यों ऐसे मुस्कुराते मेरे बात पर, ऐसे मुस्कुराते कि देखते जाओ हम क्या करते हैं, है ना। बहुत बहुत बधाई देता हूँ इनको, इन जवानों को, कि उन्होंने ऐसा एक नज़ारा बनाया कि सच में कह रहा हूँ कि गुरुदेव की कृपा का एहसास कर लिया इनके माध्यम से। और आग्रह है उन माँ बापों से, आज की हमारी रात की क्लास जो है स्वाध्याय सदन के नीचे के हॉल में होगी। आप सोच सकते हो कि स्थिति क्या बन गई, 2 दिन में ही जगह चेंज करनी पड़ रही है, और पता नहीं है स्वाध्याय सदन के हॉल से बाहर कब ले आएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। 2 दिन में यदि जगह चेंज करनी पड़े, ये काम कौन कर सकता है? केवल जैन जी ही कर सकती है। कौन कर सकती है? हाँ, ये जनरेशन कर सकती है और कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस इनको देखते ही दिन भर की पूरी थकान उतर क्या जाती, एनर्जी आ जाए। इन जवान इनके साथ रहता तो और थोड़ा जवान हो जाता हूं, है ना। लोग कहते हैं मां साहब सीनियर का क्लास क्यों नहीं लेते, मैंने कहा जिनके संगत में रहूंगा वैसा ही हो जाऊंगा। और मेरा कोई बूढ़ा होने का विचार

0: मेरा तो जवानी रहने का विचार है, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इनका तो चल रहा है, लेकिन और एक जनरेशन 25 to 40 उनसे भी मुलाकात करने का विचार है, यदि वो मेरे साथ मुलाकात करने के लिए तैयार हो तो। मेरे पास कल आए थे प्रस्ताव लेकर, 40 से लेकर 60 के लिए कुछ करो, और मैंने केवल सुना, बोला कुछ नहीं उनको, है ना। लेकिन उनकी बात पर भी सोचूंगा, विचार करूंगा, नाराज नहीं करूंगा किसी को कि गुरुदेव के यहाँ पर आया हूँ, तो थोड़ा स्वयं का नेचर तो चेंज करना ही पड़ेगा कि गुरुदेव किसी को ना कहते नहीं थे, तो प्रवीण ऋषि को भी हम ना कहने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है कि तू यहाँ आया है, तेरा प्रवीण ऋषि का कैरेक्टर छोड़ करके जी आप, है ना। अभी तीर्थ शिष्य महाराज साहब ने एक काव्य बनाया उन पर, और एक जानकारी मेरे पास आकर के दी कि आपने एक बात कहना भूल गए, 17 साल की उम्र में वो ऋषि संप्रदाय के आचार्य बने। कितने साल की उम्र में? 17 साल की उम्र में। और सहज किताब हाथ में आई तो 2-4 पंक्तियां बड़े सुंदर उनकी हैं, जो और किसी का मान रखे तो उसका भी अरमान मिले। ध्यान में रखा क्या लिखा है, ये उनकी बात कर रहा हूं। जो और किसी का मान रखे तो उसको भी अरमान मिले, जो पानी पिलावे पानी मिले और रोटी दे तो नान मिले। नान खटाई, नुकसान करे नुकसान मिले, नुकसान करे नुकसान मिले, एहसान करे एहसान मिले, जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसके आन मिले। एक दोहा है, बहुत कुछ है, पर इतने चुभ रहा है वो, इसलिए बोल रहा हूं। कहां जाए कहां लड़ाए लाड़, क्या जाने किस खाड़ में जाए पड़ेंगे हाड़। ये तिलोक काव्य कल्पतरु, इसकी छोटी सी झलक आपको बताई क्या है। और सुराना परिवार की कल के मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। तिलोक छंद संग्रह जो गुरुदेव प्रार्थना करते थे, 15 साल से लेकर या 10 साल से लेकर तो 20 साल तक के जनरेशन में जो जो अगले पुण्यतिथि तक तिलोक छंद संग्रह कंठस्थ करके सुनाएगा, उनको सुराना परिवार की ओर से सम्मान पत्र, सर्टिफिकेट और पुरस्कार दिया जाएगा। 25 साल से लेकर तो 40 साल तक तिलोक ऋषि जी महाराज साहब ने एक एक अक्षर पर अ आ ई ई एक एक अक्षर पर काव्य रचना करी है। ऐसी 3 बावनियां बनाई है। कितनी? 3 बावनियां बनाई है। वो 3 बावनियां जो कंठस्थ करेगा 25 साल से लेकर 40 साल के लिए, उनको भी सुराना परिवार की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। और ये सारी चर्चा चल रही थी और सुराना परिवार के एक सीनियर दादी बोली कि महाराज साहब हमारे लिए भी कुछ करो ना। तो मैंने कहा बढ़िया। तो तिलोक ऋषि जी महाराज साहब ने दशवेकालिक को हिंदी में बनाया है। किसमें? हिंदी में बनाया है। तो तिलोक ऋषि महाराज साहब का जो हिंदी अनुवाद का दशवेकालिक है, उसको 40 साल से लेकर अगले जो भी याद करेंगे उनको भी तिलोक श्रुत पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा।
1: श्रोते मित्र हो, परम पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज यांचं अहिल्यानगर इथं चातुर्मासानिमित्त समर्पण चातुर्मास प्रवचन मालिकेतल्या प्रवचनाचा संपादित अंश आताच आपण ऐकलात।

कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।